इन्हें जानकर हैरानी हो सकती है कि आलू के चिप्स, जो कि दुनिया के फूड कल्चर में बहुत खास मकाम रखते हैं, इतफाकी तौर पर एक बावर्ची को गुस्से के एक लम्हे में दरियाफ्त किया गया था। लेकिन यह सच्चाई वो नुक्ता है, और वो ये है कि आलू के चिप्स जो पहली बार 1853 में दरियाफ्त हुए थे, कई सालों तक 5 स्टार होटलों या बड़े क्रूज बहरी जहाज़ों के रेस्तरानों में चांदी की परात पर नफासत के साथ पेश किए जाते रहे थे। जब बात अमेरिका में इजादात की हो तो यह सेहरा आम तौर पर उन नामों को दिया जाता है, जैसे ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन ईजाद किया, राइट ब्रदर्स जिन्होंने हवाई जहाज ईजाद किया, निकोला टेस्ला या थॉमस एडिसन जिन्होंने बिजली और रेडियो नशरियात पर काम किया। ताहम शायद इस फहरिस्त में आधे हिंदुस्तानी और आधे सियाफाम जॉर्ज क्रुम का शामिल करना ज़रूरी है, जिसे अमरीकन हेरिटेज मैगजीन ने 1976 में एडिसन ऑफ लिब्रिकेशन का नाम दिया था, क्योंकि क्रम के मुजज़ाती चिप्स को इत्तेफाक से दरियाफ्त होने के दिन से अब तक अरबों बार इस्तेमाल किया जा चुका है। सन 1853 में मशहूर शेफ जॉर्ज क्रम, जो न्यूयॉर्क के शहर सराटोगा में मॉन्स लीक हाउस नामी रेस्तरां में काम करता था, उसने अपने गोश्त की डिश के साथ फ्रेंच फ्राइज पेश किए, जिसे एक अमीर गाहक ने नापसंद किया जो कि जहाज़रानी और रेलवे के कारोबार में मसरूफ था। गाहक खाने की प्लेट बावर्ची खाने में वापस करता है और आलू को बारीक काट कर तलने के लिए कहता है। क्रम ने इस दरख्वास्त को रद्द नहीं किया और एक नई प्लेट तैयार की, लेकिन गाहक चाहता था कि फ्राइज उससे भी ज़्यादा पतले हों कि उन्हें कांटे से पकड़ा ना जाए। जॉर्ज क्रम, जो कि अमीर गाहक ने दूसरी बार प्लेट वापस भेजकर उसे अपनी तोहीन के तौर पर देखा, तो बहुत गुस्से में आया। इस बार पूरी महारत का मुजाहरा करते हुए नमक और मुख्तलिफ मसाले डालकर आलू के टुकड़े तकरीबन कागज़ के पतले से काट कर फ्राई करके गाहक को पेश किए। अमीर गाहक कॉर्नीलियस वंडरबेल्ट क्रम के पतले और खस्ता फ्राई से बहुत मुतासर हुआ और उसने अपने हल्के में सबको उनकी सिफारिश की। इस वाक़े के बाद हर कोई क्रम से वही फ्रेंच फ्राइज मांगने लगता है और आलू के चिप्स अचानक रेस्तरां का पसंदीदा खाना बन जाते हैं। अगरचे कुछ अरसे बाद घरेलू ख्वातीन की तरफ से इसी तरह के फ्रेंच फ्राइज तैयार किए जाने लगे। जॉर्ज क्रम और उनकी बहन केट विक्स, जिन्होंने 1860 में अपना एक रेस्तरां खोला था, उन्होंने आलू के चिप्स का मयार कायम किया और अपनी नई इजादात को पैक करके बेचना शुरू किया। न्यूयॉर्क सिटी में आलू के चिप्स जल्द ही लोगों के नाश्ते की पहली पसंद बन गए। दरअसना आलू के चिप्स, जो साराटोगा चिप्स के नाम से मशहूर है, उनको दूसरे बड़े रेस्तरानों और क्रूज बहरी जहाज़ों के बावर्ची खाने में दाखिल होने में ज़्यादा देर नहीं लगी और ये एक लजीज लज्जत के तौर पर अमरीका और यूरोप दोनों में फैलने लगी। जॉर्ज क्रम की हादसाती ईजाद आलू के चिप्स ने उन्हें 1889 में एक अखबार के जरिए अमेरिका का सबसे मशहूर शेफ करार देने के काबिल बना दिया। अमेरिकी खाने की तारीख में दिलचस्पी रखने वाले लोग क्रम के साथ साथ उसकी बहन केट विक्स को भी इस ईजाद के मेमारों में से एक समझते हैं। दर हकीकत बाद में शाया होने वाले कई मजामीन में मुख्तलिफ नामों को आलू के चिप्स के मूजिद का खिताब देने की कोशिश की गई। आलू के चिप्स, जिन्हें कई सालों से साराटोगा चिप्स कहा जाता था, तब से अब तक मुख्तलिफ ब्रांड्स की जानिब से लाखों पैकेजेस में तैयार किए जा चुके हैं और ख़ास तौर पर बच्चों और नौजवानों की तरफ से उसे मज़े से खाया जा रहा है। तमाम आज आलू के चिप्स जिनमें ज़्यादा चिकनाई और नमक होता है, इसके हवाले से बाद सख्त कवानीन तकरीबन हर मुल्क के फूड रेगुलेशंस में दाखिल हो चुके हैं। आलू के चिप्स, जिनका अब हर कोई मानता है कि ज़्यादा इस्तेमाल मोटापे और कल्बी अमराज का बायस बनता है, अलबत्ता इनका जायका हर किसी को भाता है, बशर्ते इनका मुनासिब और माकूल तरीके से इस्तेमाल किया जाए। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।

0: ताफत में 1,666 अफराद के ज़ख्मी होने की भी तस्दीक की गई है। जलजिले के बाद 2,700 से ज़्यादा इर्तआशात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जिनमें सबसे बड़ा 6.2 शिद्दत का था। इलाके में तौदे गिरने के बायस तकरीबन 700 किलोमीटर तवील शाहराह के कई हिस्से आमदोरफ्त के लिए बंद हो गए। तबाही फैलाने वाले इस जिलसिले में 900 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तौर पर गिर गए हैं, जबकि 1,300 से ज़्यादा इमारतों को नुकसान पहुँचा है। अपने घरों से महरूम होने वाले तकरीबन 5,000 अफराद को आर्जी पनागाहों में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि तलाश बचाव और इमदादी सरगर्मियाँ बदस्तूर जारी हैं।
1: बांग्लादेश के कैंप में मकीम हजारों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमानों ने 9 साल पेशतर जुल्म सितम से फरार होकर आने वाले म्यांमार की जानब महफूज वापसी का मुतालबा करते हुए मुजाहरा किया। म्यांमार में अरकान मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद जुल्म सितम के आगाज की 9वीं बरसी के मौके पर बांग्लादेश के कैंपों में मकीम हजारों अफराद ने कोकस बाजार के इलाके में एहतजाज किया। मुजाहरीन ने बैन अवी बरदरी से मुतालबा किया इनके लिए म्यांमार के अरकान सूबे को महफूज तरीके से वापस जाने का इहतमाम किया जाए। दूसरे बरतानिया, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, कोसोवा, हॉलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड के बांग्लादेश के दारकुमंद दाखिल मुजफ्फर खानों ने रोहिंग्या मुसलमानों की सूरतहाल के बारे में एक मुश्तरक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि अरकान में इंसानी इमदाद की जरूरत बढ़ चुकी है, शहरी बुनियादी ढांचे पर फजाई हमले जारी हैं और सूरतहाल तश्वीशनाक है। इस बात पर जोर दिया गया कि अरकान के मुसलमानों को म्यांमार वापस जाने का हक हासिल है। मलेशिया के सियासतदान अनवर इब्राहिम ने जुलाई में कहा था म्यांमार पहले रोहिंग्या मुसलमानों को कबूल करने में रगबत नहीं रखता था, मगर दोनों ममालक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की बदौलत इस मामले पर इत्तफाक हो गया है। अनवर ने बताया नेपोतो इंतजामिया इब्तदाई मरहले में मलेशिया में मौजूद तकरीबन 5,000 रोहिंग्या मुसलमानों की वापसी कबूल करेगी, तहम ये वाज़ह नहीं कि कब अमल में आएगा।
0: हुकाम ने ऐलान किया है कि स्पेस एक्स अमरीकी रियासत लुजियाना में दुनिया की सबसे बड़ी खलाई बंदरगाह की तामीर के लिए 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। लुजियाना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मंगल को जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि यह तनसीब वर्मेलियन पैरिश में तामीर की जाएगी और इसे सालाना हज़ारों लॉन्चेस की मुआवनत के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। तवक्को है कि यह मनसूबा अगले 10 सालों के दौरान 3,000 बराह रास्त मुलाजमतें पैदा करेगा, जिनकी औसत सालाना तनख्वाह $92,600 होगी।
1: और कैनेडा ने 7 से ज्यादा अमरीकी शबा 15% से 50% के दरमियानी जवाबी महसूलात आयद करने का ऐलान किया है, जिसने तारीखी तौर पर करीबी इतिहादियों के दरमियान तजारती जंग को मजीद तेज कर दिया है। मंगल को ऐलान करदा ऑटोवा की जवाबी कार्रवाई 8 सितंबर से नाफजुल अमल होगी। ये वो टाइम फ्रेम है जिसका इशारा वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने उस वक्त दिया था जब हफ्ते के रोज कैनेडा की मसनुआ पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 50% ड्यूटी के अहकाम नाफज हुए थे। इसके साथ ही दाए तुर्किया से खबरें खत्म हुई। तो आइए सामिन अब सदाए तुर्किया से ओजान देनिस की आवाज में एक तुर्की